Entonces te cuida, se puse tu chiquillo, dice, ¡ah! Por tu esposo, papá, me dice, me puse tu chiquillo, no suerte que jone para sanción me cante, mujer de pregado buddhi vale goste, ¿no? Pregado buddhi, ¿no? Yo vaigyani goste, vaigyani come, ये बात होती है संशय चिन्ह होता है प्रपंच है भी इसकी सत्यता पर चिन्ह प्रश्न चिन्ह लगाने वाले बड़े प्रकांड

निष्क्रिय हो जाओ मैंने इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाना पीना छोड़ दो। थोड़ा समझो, ये कुछ गहने की बात है। अपना जो काम है वो करते जाओ और करते हुए भी अपने भीतर ये दोनों निष्क्रिय हो, कुछ नहीं कर रहा। शुरू शुरू में थोड़ी थोड़ी देर बैठ के इसका अनुभव

को समझाने के लिए उपनिषदों में ऋषियों ने बहुत सुंदर बताया, एक ही वृक्ष उसमें दो पक्षी बैठी हुई है, एक खा रही है तो दूसरे साक्षी होकर देख रहे हैं। यहां वो पक्षी की बात कह रहे हैं जो साक्षी है, जो निष्क्रिय है, उसके तरफ भी ध्यान दो, ये कह रहे हैं। दूसरी पक्षी तो खा पी रही है, दो बात सुपर्णा सही जा सका है। जो दो पक्षी है, दो सका है, साथ साथ रहते हैं,

orang sakti. Dia kata, भगवान के समझते हैं कि तुम एक क्षण भी बिना कर्म के कोई टिक नहीं सकता, टहर नहीं सकता। कर्म करते जाओ मगर कर्म के भी साक्षी बनते जाओ। ये एक पीएचडी लेवल का ऊपर की ज्ञान, थोड़ा उससे आगे का

ज्ञान गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम समर्पण प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुमधुर रसमय भजन का साथ में अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। इस लोकप्रिय प्रसारण संस्था FM अध्यात्म ज्योति मार्फत व्यवसाय वस्तु एवं सेवाको विज्ञापन गर्न इच्छुक महानुभाव सम्पर्क हेतु टेलिफोन नम्बर 98 41 28 98 41 28 90

0: एफएम अध्यात्म ज्योतिमा अब अगाडि कार्यक्रम मधुरम। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
1: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
0: नमस्ते, स्वागत अनि अभिवादन। यो कार्यक्रम मधुरममा म सभ्यता तिवारी अब केही मधुर भजनहरूको साथ

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो,
1: यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मधुरम। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
2: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई सधैँ।

असलियत सिर्फ वही देखता है दोस्तों जो जानता है कि क्या सच्चाई है और क्या मिथ्या। ये दुनिया जिसमें हम जीते हैं, इतना धन जमा कर ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरना ही नहीं, ये सब तो मिथ्या है दोस्तों। लेकिन हम में से ज्यादातर ऐसे ही रहते हैं जैसे कभी नष्ट होना ही नहीं, जैसे हम अमर हैं। दोस्तों ये सच्चाई नहीं, ये मिथ्या है।

जिसको हर किसी प्राणी में, हर किसी वस्तु में परमेश्वर दिखे, जो हर किसी को समभाव से देखे, वही ज्ञानी है। हमसे ज्यादातर लोग अपने शरीर को ही सबसे बड़ी सच्चाई मानकर एक झूठी दुनिया में जीते रहते हैं, इस दुनिया में फंसे रहते हैं, और फिर एक दिन आत्मा हमारे शरीर में से निकल जाती है और हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है। उसके बाद कोई दूसरी योनि, कोई दूसरा शरीर मिलता है। अज्ञानी का यह क्रम आना जाना लगा ही रहता है। दोस्तों, जो जितना बड़ा अज्ञानी होता है वो उतने जन्म बर्बाद करता है, लेकिन ज्ञानी सब में परमेश्वर को समान देखते हुए अपने जीवन को नष्ट नहीं करता, इसीलिए वो परम गति को प्राप्त होता है।

0: पुरुषः यः पश्यन्ति तथात्मानं कर्तारं सपश्यति।
1: तीन गुणों से बनी हुई माया ही प्रकृति है। हमारे सारे कर्म मन शरीर और वाणी के द्वारा ही किए जाते हैं और इन कर्मों के पीछे प्रकृति ही होती है। जो ज्ञानी होता है वो ये जानता है कि इन कर्मों के पीछे कर्ता प्रकृति है, आत्मा नहीं। हमसे हमारे कर्म हमारी प्रकृति करवाती है, आत्मा नहीं। दोस्तों, ये बात सिर्फ ज्ञानी ही समझता है और इसीलिए सिर्फ वो ही यथार्थ को देखता है। बाकी सब अज्ञानी सच्चाई नहीं, मिथ्या देखते हैं, और क्योंकि वो मिथ्या देखते हैं तो दुनियादारी में लगे रहते हैं और कर्मों के बंधन में बंध के एक के बाद एक दूसरे जन्म में आते और जाते रहते हैं।

ज्ञानी पुरुष जब अलग अलग भावों में या अलग अलग भूतों में एक परमात्मा को देखता है, तब ही उसे ब्रह्म प्राप्त होता है। जब वो इस बात को समझ जाता है कि आत्मा से ही हर भाव या हर भूत या हर वस्तु का विस्तार हुआ है, तब ही उसे ब्रह्म समझ में आता है। जैसे कि जब ज्ञानी को यह समझ में आता है कि आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही आशा, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही जल, आत्मा से ही अन्न का विस्तार हुआ है, आत्मा से ही यह सब प्रकट हुआ है, उसमें ही सब विलीन हो जाना है, तब उसे ब्रह्म समझ में आता है।

दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। बारिश का होना, दिन और रात का होना, सब कुछ कारण की वजह से है। जिसका कुछ कारण नहीं होता उसे अनादि कहते हैं। जैसे कि ब्रह्म या परमात्मा, उसी परमात्मा का ही अंश है हमारी आत्मा। आत्मा अनादि भी है।

और निर्गुण भी। निर्गुण का मतलब है दोस्तों कि आप किसी डेफिनेशन या एट्रीब्यूट से उसे डिफाइन नहीं कर सकते। जो अनादि होता है उसका कभी नाश नहीं होता। यही वजह है कि आत्मा शरीर में होते हुए भी शरीर के कर्मों में या संस्कारों में लिप्त नहीं होती।

आकाश या स्पेस हर कहीं है, लेकिन इस आकाश में आप कोई रंग भर सकते हैं? क्या इसे मोड़ या तोड़ सकते हैं? वो इसलिए कि आकाश सूक्ष्म है, सटल है। आकाश लिप्त नहीं होता, किसी चीज या वस्तु में इन्वॉल्व नहीं होता। दोस्तों, आकाश के जैसे ही हमारी आत्मा भी सूक्ष्म होने की वजह से हमारे शरीर के गुणों में लिप्त नहीं होती। हमारी देह के गुण प्रकृति के कारण से होते हैं। प्रकृति की वजह से जो भी होता है वो स्थूल है, यानी कि नाशवान है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो ये किसी भी तरह के शरीर में रहे, आत्मा का वही स्वरूप रहता है और वो स्वरूप कभी बदल नहीं सकता।

जब सूर्य प्रकाशित होता है तो उसका प्रकाश सब तरफ फैलता है, जमीन पर भी, पेड़ पर भी, पक्षी पर भी और हर किसी वस्तु पर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश कैसे बंटके हर वस्तु पर या प्राणी पर पड़ रहा है? नहीं, वो प्रकाश तो एक है और सब पर गिर रहा है, हर किसी को वो प्रकाशित कर रहा है। इसी तरह से आत्मा भी है, एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। सूर्य की तरह ही हम सब में, जीव या निर्जीव में, आत्मा एक ही है और वो किसी में लिप्त नहीं। इस तरह से आप भी आत्मा को एक ही माने दोस्तों, उसे एक परमात्मा माने, बटा हुआ नहीं।

क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान माने, यानी कि टेम्पररी माने दोस्तों, और क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी माने, यानी कि अनादि, अनंत और परमानेंट। जो इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, दोनों के बीच के फर्क को जानता है वो ही ज्ञानी है। जो पुरुष प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं और अपने ज्ञान नेत्रों से क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानते हैं, वे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे पुरुष कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो अज्ञान को, मिथ्या को खत्म कर चुके हैं, वो सच्चाई जान चुके हैं। उन्होंने अपना जन्म वेस्ट नहीं किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता का 13वां अध्याय। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति की बात की गई। क्या ज्ञान जरूरी है और क्या नहीं, यह भी बताया गया। अब आगे 14वें अध्याय में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।

0: गीता ज्ञान
1: भगवद गीता अध्याय 14। जय श्री कृष्ण दोस्तों, सुनते सुनते भगवद गीता के 14वें अध्याय पर आ पहुंचे हैं। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, सत रज और तम। इस दुनिया में ये जो भी खेल हो रहा है ना, सारी राजनीति, सारे रिश्ते, सारा काम धाम, सब इन्हीं तीनों गुणों का कमाल है। और ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं बता रहे हैं। मैं शैलेंद्र भारती आपका इस अध्याय में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रारंभ करते हैं भगवद गीता का अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग।

0: ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः।
1: ज्ञान उस जल धारा की तरह है जो बड़े से बड़े पत्थर पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है, लेकिन तभी जब वो निरंतर होता है। ज्ञान की साधना आसान नहीं है, लगे रहना पड़ता है। ऐसा ही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूं। फिर से उस ज्ञान को बताएंगे जिसे जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, कार चलती है लेकिन यह पता नहीं होता कि कहां जाना है। इसका ज्ञान उस ड्राइवर को ही होता है जो उसे चला रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप में और बिना ज्ञान के काम करने वाले में फर्क हो, तो ज्ञान हासिल करने की कोशिश करिए।

बार बार कितनी ही बार कृष्ण गीता में दोहरा चुके हैं कि ज्ञान जिसे हासिल हो जाता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है, मृत्यु लोक में उसे नहीं आना पड़ता। अगर इतनी बार कृष्ण ने कहा है तो स्वाभाविक ही है कि यह सबसे बड़ी बात होगी। अपने इस ज्ञान के बारे में बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है।

0: ये जो प्रकृति है इसे ही योनि मानना चाहिए, यानी कि माता। कृष्ण कहते हैं कि आठ तत्वों वाली जड़ प्रकृति ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि है। जड़ प्रकृति इसका अर्थ है जो भी अनकॉन्शियस है। दोस्तों, ये आठ तत्व हैं जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा को चेतना रूपी बीज की तरह स्थापित करते हैं। चेतना का अर्थ है कॉन्शियसनेस। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। अगर हमसे हमारी कॉन्शियसनेस छीन ली जाए दोस्तों, तो हम निर्जीव हो जाएंगे। जीवित और मृत में यही फर्क होता है।
1: सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः।

कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी प्राणी होता है, चाहे भालू हो या शेर, या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर हो, या हम और आप, जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, उनको धारण करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है, और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता। प्राणी का जन्म माता और पिता से ही संभव है। जो काया है, शरीर है, बॉडी है, बिना प्राण के वो जड़ प्रकृति है, और जब उस शरीर में प्राण आ जाते हैं, लाइफ आ जाती है, वो तभी संभव होता है जब उसमें आत्मा आती है, और वो आत्मा डालने वाले पिता कृष्ण ही हैं।

चेतना आत्मा जड़ प्रकृति से कैसे बंधती है, उसी के बारे में कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। प्रकृति गुण तीन तरह के होते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। इन तीन गुणों के कारण ही हमारी अविनाशी आत्मा यानी कि इनडिस्ट्रिक्टिबल सोल हमारी विनाशी शरीर से बंध जाती है। हमारा शरीर विनाशी है यानी कि यह नष्ट हो जाने वाला है दोस्तों, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा और शरीर में यही संबंध है।

तीनों गुण एक तरह के बंधन हैं, जिससे हमारी आत्मा शरीर से बंधती है। सतोगुण भी एक तरह का बंधन ही है, लेकिन सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करवाता है। मुक्त करके सतोगुण आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है। आत्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम उसे देख नहीं पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते। सतोगुण हमको अज्ञान से दूर कर हमारा साक्षात्कार हमारी ही आत्मा से कराता है। क्योंकि सतोगुण भी बंधन ही है, तो इस गुण से जीव सुख और ज्ञान के अंधकार में बंध जाता है।

जो आपको प्राप्त नहीं, उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश तृष्णा होती है, और जो प्राप्त हो जाए उससे मोह को आसक्ति कहते हैं। इस श्लोक में कृष्ण रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। रजोगुण कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न होता है। इच्छाओं और लोभ के कारण ही हमारे अंदर रजोगुण आता है। इसी रजोगुण के कारण ही शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। सकाम कर्म यानी कि कर्म करते हुए फल की अभिलाषा करना, रजोगुण हमें इस फल से बांधता है। कुछ गिनती के लोगों को छोड़ पूरी दुनिया कर्म के फल से बंधी हुई है, और उसकी वजह रजोगुण ही है।

तमोगुण को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे तमोगुण कहते हैं। इसी तमोगुण के कारण जीव प्रमाद में आता है, यानी कि पागलपन में बेकार के काम करने की प्रवृत्ति में आता है। तमोगुण से ही आलस्य होता है, यानी कि आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति, और निद्रा भी तमोगुण का ही लक्षण है। निद्रा का अर्थ है अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति। कितनी ही बार कितने ही लोग मशीन की तरह बस काम करते रहते हैं दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी पागलपन लालच या अज्ञान में बस लगे रहते हैं। वो प्रमाद और निद्रा का मिश्रण है और इसकी वजह होती है तमोगुण।

0: तीनों सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण बंधन हैं। सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, वो प्राणी को शाश्वत सच को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, जबकि रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है। रजोगुण से प्राणी बस काम के फल के बारे में, आगे होने वाले फायदे के बारे में या हो चुके नुकसान के बारे में ही सोचता रहता है, और फिर पहले से भी ज्यादा प्राप्त करने के लिए और कर्म करता है। लेकिन कर्म के लिए कर्म नहीं, बल्कि फल के लिए कर्म करता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। पागलपन की स्थिति, केयरलेसनेस की अवस्था, नशे की हालत ही प्रमाद होती है दोस्तों।
1: आदरणीय श्रोता, यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता, गीता ज्ञान। अब एकैछिन समयतर्फ ध्यान दिउँ। यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको 8:30 भएको छ र अब एकैछिन व्यावसायिक सन्देशहरू।

सत, रज और तम होते तो तीनों एक ही स्थान पर हैं, एक ही हृदय में, तो फिर अलग अलग कैसे बढ़ जाते हैं? उसे बताते हुए कृष्ण कहते हैं, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है, इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। हर गुण बाकी दोनों को दबाकर खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब भी आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि उस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी हो रहा है।

इस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी है उसको जानने का तरीका बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ। इन्हीं 9 द्वारों से हम इस दुनिया के समक्ष होते हैं। ये सारे दरवाजे बाहर की दुनिया की तरफ खुलते हैं। जब इन 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश आने लगता है तब ये मान लीजिए कि रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाकर सतोगुण बढ़ रहा है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। आप काम करते हैं उसके बाद पैसे आते हैं, उस पैसे से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति से आपको आनंद आता है, इसलिए आप और काम करना चाहते हैं ताकि और पैसा आ सके। यही रजोगुण की निशानी है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप काम करने के लिए काम नहीं कर रहे, पैसे से मिल रहे आनंद को बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। रजोगुण की वजह से लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है।

जब कोई हाथ पर हाथ रख बैठे रहने में ही आनंद पाता है, अपने अज्ञान में खुश रहता है, पागलपन की हालत में आ जाता है या किसी भी मोह की वजह से अपना काम करना छोड़ देता है, तो इसका अर्थ है उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण को अत्यंत अविवेक कहा जाता है। विवेक यानी कि सही गलत के बीच में चुनाव करने की क्षमता। जब यह क्षमता एकदम ही खत्म हो जाती है, जब उस प्राणी को समझ ही नहीं आता कि वो जो कर रहा है वो एकदम गलत है, और वो बस करता ही चला जाता है, तो समझ लीजिए कि वो तमोगुण के वश में है।

दोस्तों, मरते समय हिसाब किताब होता है, उसे मरण समय की अवस्था का फल कहते हैं। कर्मों का बही खाता खुलता है और पूरे जीवन का फल मिलता है। तो जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म की वजह से निर्मल स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। निर्मल स्वर्ग लोक मतलब जहां सब कुछ निर्मल है, जहां पर लोग उत्तम तत्व यानी कि भगवान के ज्ञान को जानते हैं, जिसमें सतोगुण का भाव ज्यादा होता है, तो उसके मरने पर वो ऐसे स्वर्ग में जाता है जहां सब ज्ञानी हैं। मृत्यु लोक की तरह अज्ञान और अज्ञानी नहीं है। रजसी प्र

पूरा जीवन आप जो भी करते हैं उसका एक अकाउंट बनता रहता है दोस्तों, और अंत में इस अकाउंट की बैलेंस शीट चेक होती है। अंत समय में जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जब इस जीवन में हमेशा रजोगुण प्रभावी रहा, यानी कि आप करके उसके फल के लोभ में ही सब कुछ करते रहे, तो अगला जन्म इससे अलग कैसे हो सकता है? और उसी प्रकार तमोगुण की बुद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है।

सतोगुण में जो कर्म किए जाते हैं उनका फल सुख होता है, शुभ कर्मों का। सात्विक कर्मों का फल भी शुभ और सात्विक ही होता है, वो फल जो ज्ञान से भरा होता है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख होता है। जब लोभ होता है तो आप बेचैनी में बस लगे रहते हैं, उसमें शांति नहीं होती, आपको पता नहीं लगता, लेकिन असल में आप दुख में ही होते हैं। क्योंकि जो सुखी होता है ना, वो तो संतुष्ट होता है दोस्तों, वो शांति में होता है। और तीसरे गुण तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान होता है। जब आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आलस या पागलपन की हालत में हैं, तो बदले में बस अज्ञान ही तो हासिल होगा।

सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान यानी जो आपको ईश्वर तक ले जाए, जो आपको ये समझाए कि आप में उपस्थित आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। यह हमारे अंदर अज्ञान की परत हटने के बाद ही संभव होता है। रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है। लोभ कभी ना खत्म होने वाली हालत होती है। आपको लगता है कि बस इतना हो जाए और उसके बाद आप रुक जाएंगे, ना, लोभ कभी नहीं रुकने देता दोस्तों। और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद, मोह, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। इसीलिए तमोगुण तीनों में सबसे बुरी अवस्था होती है।

सत, रज और तम तीनों गुण हमको किसी न किसी योनि में भेजते हैं। तीनों गुण बंधन हैं, तीनों ही बांधते हैं। सतो गुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है। स्वर्ग के उच्च लोक यानी कि जहां ज्ञान होता है, ज्ञानी होते हैं, जहां दुख नहीं होता। रजोगुण में स्थित जीव मध्य में यानी कि पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं, यानी उनका फिर से जन्म होता है और वो वापस से मनुष्य योनि में आते हैं। और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। नीच योनि से मतलब जो मनुष्य नहीं यानी कि जानवर हैं, वो कैसे अपने अज्ञान को दूर कर आत्मा को पहचानेगा?

अगर सत, रज और तम तीनों ही बंधन हैं और ये हम में प्रकृति के कारण होते ही हैं, तो आपको लगेगा कि इनसे बचना संभव नहीं, किसी न किसी बंधन में बंधेंगे। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है और स्वयं को ही दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर कृष्ण को परमात्मा जानकर उसके दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। आपको लगता है कि करने वाले आप हैं, यही भूल है। करने वाले ये तीनों गुण हैं। जब आप इस बात को समझकर दृष्टा बन अपने इन गुणों को पहचान कर इन्हें देखने लगते हैं, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ FM अध्यात्म ज्योति 104.8।

सत, रज और तम, इन नाम के तीनों बंधनों से बचना संभव है, और संभव ही नहीं, यही तो एकमात्र लक्ष्य भी है। जो इस बात को समझ जाते हैं वो शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। ऐसा होने पर आप बंधन से छूट जाते हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करते हैं। परम आनंद वो आनंद की अवस्था है जो कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। बाकी हमारे सांसारिक यानी कि वर्ल्डली प्लेजर बहुत ही थोड़े समय के होते हैं। हैरानी की बात है कि हम सब क्षणिक आनंद के पीछे भागते हैं, परम आनंद के पीछे नहीं।

कृष्ण की बातें सुन अर्जुन के मन में प्रश्न आता है और वो पूछता है, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? जो पुरुष इन तीनों बंधनों से मुक्त हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? वो किस तरह का आचरण करता है? और सबसे बड़ी बात कि वो मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है? ऐसा क्या करना पड़ता है कि जिससे वो इन तीनों बंधन से छूट जाए? हमारा हर काम सत, रज और तम तीनों में से किसी एक से प्रभावित होता ही है, तो फिर हम इनसे बचे कैसे?

कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इन तीनों में से किसी भी गुण से घृणा नहीं करता और समान भाव रखता है और ना तो उनमें प्रवृत्त ही होता है ना ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, वो इन बंधनों से बच जाता है। ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश होता है सतोगुण, कर्म करने में आसक्ति होती है रजोगुण, तथा मोह रूपी अज्ञान को कहते हैं तमोगुण।

जो इन तीनों से घृणा ना कर ना इनसे द्वेष नहीं रखता, ना तो वो इन गुणों में रुचि दिखा इनमें शामिल होने की कोशिश करता है और ना ही इन गुणों से निवृत्त होने की कोशिश करता है। इन गुणों को पहचान इनके बंधन से छूटना है, न कि इनसे घृणा करनी है।

जब आप उदास होते हैं तो क्या किसी भी वस्तु या बात में रुचि लेते हैं? नहीं। उसी तरह से अगर हमें सत, रज और तम गुणों से छुटकारा पाना है तो एक उदास व्यक्ति की तरह ही बर्ताव करना है। कृष्ण कहते हैं कि जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, वो इन गुणों से पार हो जाता है। कर्ता आप नहीं, आपके ये गुण हैं। एक उदासीन की तरह आपको इनका दृष्टा यानी कि देखने वाला बनना है। ना इन गुणों में रुचि रखनी है और ना ही इनसे घृणा करनी है। सम दुख

ही समानता की स्थिति क्या होती है? जब आप सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहते हैं, जब आप अपने आत्म भाव में स्थित रहते हैं, आपको बाहर के किसी भाव की आवश्यकता नहीं। जब आप मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझने लगते हैं, जब आपके लिए न तो कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय, जब आप निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोते, अगर आप इस तरह के समान भाव में आते हैं तो इन तीनों सत, रज और तम गुणों के बंधन से बच सकते हैं। यही उस पुरुष के लक्षण होते हैं जो इन गुणों से पार पाता है।

0: प्रकृति के तीन गुणों सत्य, रज और तम से पार पाना आसान नहीं। अर्जुन ने सवाल किया था कि जो इनसे पार पाता है उसके क्या लक्षण होते हैं। उसी का उत्तर देते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, कर्मों को करते हुए आप ये न समझिए कि उस कर्म को आप कर रहे हैं, उनको आपके गुण कर रहे हैं, अर्थात कर्ता।
1: आदरणीय श्रोता, आजको लागि कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यति नै। नमस्ते।

0: उत्कृष्ट स्थान।
1: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस, कमतानको बगैंचा, बेलकोटगढी, मदानपुर 12, देउराली।
0: सम्पर्क नम्बर
1: 9841470164,
0: 9832545054।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320 4111 98020 76888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।
5: Barcelona.

चुप ने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता, चुप

पल खाई हुई देख रहा हूँ तेरी नजर अपनी नजर तक आई हुई गालों पर जुल्फे न गिरा तू है कयामत मैं हूँ बला गालों पर जुल्फे न गिरा तू है कयामत मैं हूँ बला छुपने

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
5: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
7: सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
5: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।� 1048

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

जो जो चलना फरकाई फरकाया हमारे चेले आलो जो जो चलना फरकाई फरकाए मोलाई मोहनी लायो नानी तुलसी लड़काई लड़का।

छबेना के न हो गम के तो किस्त सुंदा फुरंग भई लाहरे ढल के तो लेकिन साले क्या है बंदे छूट है सल के तो के ना भूचस लाहरे दाई लूटना।

रात भरी सुअनी सोलै माथी सुती रस्सी खाई पीछे परे पत्तो नहीं मामू ये बानी पर ना लेता भाग्य दयो खुफिया।

0: सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
5: सम्पर्क नम्बर 5320411 98020 76888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जे जे ज्वेलर्स के किन्नुस
1: जे जे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी संपर्क नंबर 5320411 9802076888
0: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान
2: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ यहाँलाई द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृत धारामा। अब हामी द आर्ट अफ लिभिङका प्रणेता श्री श्री रविशंकरज्यूको प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा आजको प्रवचन सुन्नेछौँ।
1: जो हँसते हैं और सबको हँसाते हैं उनके लिए सारी दुनिया अपनी होती है और अपना यही है यहाँ का उक्ति भी यही है, हम हंसो और हंसाओ, मत फंसो और मत फंसाओ।
2: गुरुदेव, हमने आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद अन्नदाता सुखी भव सीखा। आज किसानों को आश्रम में देखकर लग रहा है कि उनको उनका खुश रहना कितना जरूरी है सबकी प्रगति के लिए। गुरुदेव, किसानों की खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं?
1: पहले सो प्रतिनित्य जब भोजन करते वक्त स्मरण करें, अन्नदाता सुखी भवा, ये मंत्र बोलें सब लोग। एक दूसरी बात, किसानों को प्रोत्साहन देना। आप लोग कभी गांव में चले जाओ, जो शहर में रहते हो कभी गांव में जाइए, वहाँ उनके साथ बैठिए, मिलजुल के बातें करिए। सीधा किसानों से संपर्क भी होना चाहिए शहर वालों के लिए, ये भी करें। बहुत सी बातें हम कर सकते हैं। देखो, बात करने से, एक दूसरे की कष्ट सुख बांटने से ही काफ़ी बोझिल जो महसूस करते हैं वो कम हो जाता है, व्यक्ति हल्का महसूस करने लगता है। यही तो अपना किया था, 508 गांवों में हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स गए, स्वयंसेवक गए, घर घर गए। विदर्भा में उन दिनों में जब आत्महत्या की हरकतें बहुत अधिक थी, तो गए जहाँ जहाँ यहाँ गए वहाँ पूरी तरह से बंद हो गया। मगर अभी जाने के लिए और बहुत जगह है, 500 गांव तो बहुत कम है, हम तो लाखों गांव में हैं। मगर एक आदर्श, एक मॉडल तो सामने आ गया, कैसे हम इसको किसानों की जो परेशानियों को उनके साथ भागीदार होने से, भाग लेने से ही काफ़ी कुछ हल्का कर सकते हैं। और दूसरा, ध्यान सिखाना चाहिए, इन सबको ध्यान के पद पे ले आए, चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अभिनेता हो। मुंबई के देखो कितने सारे बड़े नामी अभिनेता लोग, अभिनेत्री और अभिनेता दोनों कितने आत्महत्या किए हाल ही में, बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं। तो अपनापन, एक आत्मीयता का वातावरण हमें निर्माण करना चाहिए। ये हमेशा रहा भारत में, आज भी गांव में जाओगे तो वो तुम्हारा नाम पता नहीं पूछेंगे, अरे भाई आ जाओ बैठो, तुम चाय पी लो, लस्सी पी लो, क्या पियोगे पूछेंगे। एक लोटा लस्सी उनके पास हो तो आधा तुमसे बांट के पियेंगे, ऐसा एक हमारी संस्कृति रहा। बाद में पूछेंगे कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या करते हो, पहले तो बोलेंगे अरे भाई चाय पीना है, चाय पी लो। ट्रेन में भी देखो, ट्रेन में जब जाते हैं आजू बाजू के लोग खुद पी के बैठते नहीं हैं, एक दूसरे को बांटते रहते हैं, बांट के खाते, बांट के पीते। तो ये एक आत्मीय वातावरण हमको निर्माण करना पड़ेगा। अब जहाँ जहाँ ये कुंठित हो गया उसको पुनर्स्थापित करना जरूरी है।
2: गुरुदेव, वसंत पंचमी को सरस्वती जयंती के रूप में मनाते हैं, इस दिन पीले वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करने के पीछे क्या कारण है?
1: देखो, हर रंग का अपना अपना होता है। लाल रंग देखते ही डेंजर समझते हो, कई कई शुभ मानते हैं, ये मान्यता के ऊपर है। विद्यार्थी ब्रह्मचारी हमेशा पीला वस्त्र पहनते थे, जब किसी बच्चे का जन्म होता तो पीला वस्त्र पहना के उनको करते हैं। मैंने वस्त्र को हल्दी में डुबो के उसको सुखा के करते, क्यों बच्चे इधर उधर जाते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी बैक्टीरियल है, कृमिनाशक भी है पीला वो हल्दी, हल्दी मैंने कोई और भी हल्दी रंग ऐसा नहीं चढ़ाते हैं, हल्दी पीला रंग मैंने कोई और रंग ऐसे नहीं चढ़ाते, हल्दी का रंग है वो, हल्दी में जितना गुण है वायुस्थापक है, एंटी एजिंग कहते हैं, फिर हल्दी में क्या कृमिनाशक है, रोग निरोधक शक्ति है, इस तरह से उसके गुण के वजह से बच्चों को पहले विद्यार्थियों को पीला कपड़ा पहनाते थे ताकि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, ये कारण एक आरोग्य के स्वास्थ्य के कारण से भी वैसा हुआ करता था, पीला वस्त्र पहनाते थे। और बड़े हो जाते हैं सन्यासी को लाल कपड़ा ताकि उनका शरीर मजबूत है, तो केसरी उनका तो केसर रंग, गेरुआ गेरुआ पहनते थे। तो ये सब एक मान्यता है, नियम है। आप देखो यहाँ बहुत आश्चर्य की बात होगी, कर्नाटक में सफेद कपड़ा पहनाते हैं वधू को, शादी के दिन सफेद कपड़ा पहन के शादी करती है, और जो महिला विधवा होती है वो लाल कपड़ा पहनती है यहाँ। और यहां से थोड़ी दूर कर्नाटक में बिल्कुल उल्टा, वहां लाल कपड़ा शादी में लाल कपड़ा पहना के, यहां से तो तमिलनाडु में लाल कपड़ा पहना के शादी कराते, यहां उसको अच्छा नहीं मानते। तो इस तरह से एक एक

0: के दिन सारे बसंत ऋतु आ गया। बसंत ऋतु आने के 5 दिन बाद सब उत्सव मनाते हैं। ठंड निकल गया, आजकल मौसम बदल गया तो बसंत पंचमी भी ठंड होने लगी। कायदे से बसंत पंचमी तक ठंड नहीं होनी चाहिए, मौसम अच्छी हो जानी चाहिए, फिर फूल खिलने लगते हैं, बसंत की खबर लाती है। तो हाँ, हम इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, वस्त्र क्यों, इसका रंग क्यों, कोई भी रंग में बैठो अपने भीतर रंग जागे तो हो गया। भीतर तो प्रेम रंग में रंग जाओ, ज्ञान में रंग जाओ, प्रसन्नता में रंग जाओ, तो वही है।
1: गुरुदेव, सुदर्शन क्रिया और प्राणायाम में क्या अंतर है?
0: करके देखो। प्राणायाम करने के बाद तो क्रिया करते हो ना भाई। हाँ
1: गुरुदेव, साधना के पथ पर होते हुए भी जीवन में कभी कभी दुख इसलिए भोगना पड़ता है क्योंकि हम जिनसे जुड़े होते हैं दुख भोगना उनका प्रारब्ध होता है। हम उनको छोड़ भी नहीं सकते और उनके साथ जुड़े रहे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए?
0: देखो, जो नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, उसको करना ही नहीं। क्या तुम कर सकते हो ये सोचो। जो हो रहा है उसको तुम बदल नहीं सकते तो फिर उसको सोच सोच के जूझना क्यों? ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर, जो नहीं हो सकता, जो नहीं किया, जो नहीं कर सकते, इसी के बारे में सोच सोच के तुम अपनी खुद की ऊर्जा को, ताकत को कम करते रहते हो। रात को सोने से पहले ये याद करना, क्या क्या तुम किए, तुमने क्या क्या अच्छा किया है और तुम क्या कर सकते हो, ये सोच के सोना चाहिए ताकि तुम्हारी अंतर चेतना जो है सबकॉन्शियस माइंड में नहीं नहीं नहीं का ना हो करके हाँ हाँ होगा। समझ रहे ना? नहीं तो हमारी चेतना में हमने इतना नकारात्मक चीजें भर देते हैं, फिर सुस्ती आ जाती है, फिर उसमें थक जाते हैं एकदम, फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता। इसीलिए क्रिया करें, ध्यान करें, योग निद्रा करो। योग निद्रा में कहते ना, एक कोई संकल्प लो, योग निद्रा करने से पहले, करने के बाद क्या प्रसन्न, मैं कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ सो होगा, इस तरह का मन में एक सकारात्मक भाव डालना पड़ता है हमें। यही अभ्यास है, संतोष भी एक अभ्यास है। एक व्यक्ति को देखे, कोई पूछ रहे थे कि भाई तू क्यों रो रहा है? मैं रो नहीं रहा हूँ जी, मेरा चेहरा है ही ऐसा। ऐसे हमने कर लिया अपना चेहरे को ऐसे, जब भी देखो ऐसे, ये नहीं हो रहा जी, वो नहीं हो रहा जी, नहीं हो रहा, नहीं होने तो छोड़ो। तुमने 100% लगाया क्या? नहीं लगा तो लगाओ। जब 100% किसी भी बात पे तुम लगा देते हो फिर ये झंझट नहीं होते, फिर मन में ये बात नहीं रहते, अरे ये नहीं, वो नहीं, मैंने किया जितना कर ना सक सब किया मैंने, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो क्या, आगे बढ़ो।
1: गुरुदेव, भौतिक जीवन में सफलता के चरम बिंदु पर होकर भी यदि भक्ति की तीव्र चाह उठे तो क्या करना चाहिए?
0: पहले तो जीवन को समग्र रूप से देखो, ये भौतिक जीवन है, ये आध्यात्मिक जीवन है, ऐसे अपने मन में ही तुमने कंपार्टमेंट कर दिया, बांटने लग गए तो वो स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाएगी तुम्हारी।

जीवन जीवन है, जीवन में सब कुछ है। एक भोजन में सब कुछ होता है, तीखा भी होता है, मीठा भी होता है, मिर्ची भी होती है वहाँ, मधुरता भी होती है, सब है ना, स्निग्धता भी होती है। इस तरह से जीवन में जो भी है सब एक साथ लेके आगे चलना चाहिए हमें। अध्यात्म जीवन का एक अविभाज्य अंग है, होना भी चाहिए, क्योंकि अध्यात्म से बल मिलता है और बल से तुम अपना काम कर सकते हो। कोई भी काम करने के लिए बल की आवश्यकता है, और भक्ति तो रहती ही है हमारे भीतर, किसी ना किसी रूप में भक्ति हो रहती, श्रद्धा भी भक्ति ही है। भक्ति माने क्या? लगाव, प्रेम। किसी को खेत में भक्ति होगी, किसी को जो भगवान दिखता नहीं उस पर भक्ति होगी, किसी को किसी मूर्ति पे भक्ति आ गई। तो ये सब अभिव्यक्ति है भक्ति की। भक्ति के बिना कोई है ही नहीं। भक्ति माने क्या? प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा। वो तो हर एक जीवन में, और जब तनाव से तुम भर जाते हो, छोटी छोटी बातों को लेके फंस जाते हो, दिमाग को उससे उलझ जाते हो, उलझा लेते हो अपने आप को, तो भक्ति धूमिल हो जाए। धूमिल माने समझते हो ना, ढक जाती है, चली नहीं जाएगी, ढक जाती है। जैसे राख से अंगारा जो है ढक जाता है, तो इस तरह से तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वो तो है, वो मगर वो अभिव्यक्त नहीं होता, वो दिखती नहीं है। सो इसलिए ये सब पर्दा फारिश करके चमक जाना चाहिए, भीतर की चेतना को जगना, जगने देना चाहिए। जैसे एक बीज में तो अंकुर नहीं दिखता, मगर बीज को जमीन पे गाड़ के पानी देते तो अंकुर फूट के निकलता है। ऐसे ही हम सब बीज रूप में सबके भीतर भक्ति है, प्रेम है। उसको जरा सा पानी चाहिए, उसको जरा सा एक वातावरण चाहिए, फिर वो निखरेगा, जरूर निखरता है। आप देखो, जब स्वातंत्र का दिवस होता है, जब सब लोग खड़े के भारत माता की जय बोलते हैं, हाँ, तब कितनी अच्छी एनर्जी उठती है कि नहीं? खासतौर से जब कोई वहां राजनेता नहीं हो, सेवक ही सेवक हो, तो कुछ ज्यादा ही एनर्जी लगती। सभी राजनेता नहीं, कुछ राजनेता तो बोलने के लिए बोलते हैं जोर से आवाज, बट भाव से उठना अलग बात होती है। अब महाराष्ट्र में गणपति के उत्सव के टाइम पे जाके देखो, गणपति पप्पा मोरिया को देख, सबके रोंटे खड़े हो जाते, खड़े हो जाते कि नहीं? कितने लोगों का यह अनुभव है। अब विठल की पालकी जाती है, तब देखना क्या विठला विठला विठला करते, तो सबके भीतर एक गदगद होने लगते हैं, जोश और एक तरह की तरंग उठने लगते, प्रेम। ऐसे ही तुम कलकत्ते चले जाओ, वहाँ दुर्गा पूजा के टाइम पे देखो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ अब मैं कम्युनिस्ट हूँ। जो कम्युनिस्ट भी है वो दुर्गा पूजा के टाइम पे अपना वो कोट उतार के रख देता है, उस वक्त वो नहीं मानता मैं कम्युनिस्ट। दुर्गा पूजा के पहले या बाद में बोल सकते हैं मैं कम्युनिस्ट, मैं कुछ नहीं विश्वास करता हूँ, पर दुर्गा पूजा के वक्त जो सबके अंदर एक जोश निकली, भक्ति निकला, भाव की लहर उठती है, तो वो सांक्रामिक होता है, सबको लग जाता है। ऐसे भारत जब चंद्रयान में गया, सब लोग चंद्रयान को देखते, टेलीविजन में देखते, जय हिंद बोलते, जय भारत माता की जय, तो कितना सबका रोटे खड़े हो, पूरे देश की बच्चा बच्चा, देश का बच्चा बच्चा देखने लग गया था, अरे हमारा जो भारत का झंडा चांद में जाके गड़ रहे हैं, आज मिशन मार्स गया, तो इतना एक भाव जगा जगा कि नहीं?
जगह, कितने लोगों को लगा कि जगह बहुत उस वक्त। इसी तरह से चाहे देश प्रेम हो, दैव प्रेम हो, या कोई अपने बहुत प्रिय हो उनके प्रति प्रेम हो, तो भाव की लहर उठती है ऐसे। तो भक्ति सब में है, हाँ, ये मान के चलना। ठीक है, अभी हम ध्यान करते हैं। देखो, अन्न उपजता है पृथ्वी से, जमीन से, ऐसे आनंद उपजता है आकाश से। आनंद का बीज जो है आकाश में बोया जाता है, वही है सद्विचार। तुम कुछ नहीं, किसी के बारे में एक नकारात्मक विचार लेके 10 मिनट लगातार उसको सोचो, देखो कैसे लगेगा तेरे को। ऐसे लगेगा तो बहुत असह्य लगता है, अंदर से नेगेटिविटी, किसी को सहन नहीं होता, ऐसे उठने लगता है तेरे भीतर। ऐसा ही यदि एक अच्छे विचार है तो वो आनंद का जन्म देता है। तो वही है मंत्र, मंत्र का शक्ति यही है कि वो आकाश में बीज बोने जैसा है। साधना हल चलाना आकाश में, फिर उसमें मंत्र बीज बोना होता है, फिर उसका फल क्या है, आनंद। 10वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गजनी भारत आए तो उन्होंने 17 बार, आपको पता है, सो 18वां बार आके उन्होंने शिवलिंग को तोड़ दिया, कि वो शिवलिंग भू को स्पर्श नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उसमें था, आकाश में तैरता था। और ये शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग कैसे आकाश में टिका हुआ है, नीचे से आकाश से, तो इनको समझ में नहीं आता, तो उन्होंने वो शिवलिंग को तोड़ दिया। बहुत सारे पैसे धन वगैरह ले गया, उसको तोड़ने के बाद उसकी जो टुकड़े रहे, उस टुकड़ों को कुछ अग्निहोत्री लोग वहाँ से बचा के लेके आए थे, उस टुकड़े से छोटे छोटे लिंग बना दिए उन्होंने, छोटे लिंग बना उससे, और वो परंपरा से वो लोग बचा के अपने घर पे रखे थे। 100 साल पहले उन्होंने कांची के शंकराचार्य से बोले, तो उन्होंने कहा राम मंदिर के बाद ये तुम बेंगलोर में संत थे उनके पास ले जाओ, उनको देना, वो जो करना करेंगे, ऐसे 100 साल पहले बोले थे। तो 100 साल पूरा हो गया, तो वो आए थे वो पंडित जी, अभी 3-4 दिन पहले यहाँ आए थे, वो यहाँ वो दे गए। तो ये शिवलिंग यहाँ अभी गुरुकुल में रखा हुआ है, इसको आप छू सकते हैं, ज्योतिर्लिंग है, और इसमें आयस्कांत है, ये देखिए, ये दिखा रहे हैं।

0: यहाँ पर है दर्शन के लिए, आप लोग कभी दर्शन कर सकते हैं, जाके मिल सकते असली ज्योतिर्लिंग। यहाँ विराजमान है सच्चे ज्योतिर्लिंग, जो पुराने पता नहीं कितने लाखों सालों से हजारों सालों से वो है। ठीक है ना, बस बढ़िया।
1: गुरुदेव का अनाउंसमेंट है, किसान समृद्धि महोत्सव में 1000 किसान महाराष्ट्र से आए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के जल संरक्षण अभियान से इन किसानों को बहुत लाभ मिला है। अपनी कृतज्ञता दर्शाने के लिए किसान बंधु गुरुदेव को सम्मानित करना चाहते हैं। 2,00,000 पेड़ 5,000 किसानों को वितरित किए गए, जिससे उन्हें लाभ मिला और फल प्राप्त हुए। वे उस फल को गुरुदेव को भेंट करना चाहते हैं।

चलो चल चल, बहुत अच्छा भैया। क्या नाम है आपका? लातूर से। आर्ट ऑफ लिविंग तरह से लगाया, बहुत अच्छा। 5,000 का दिया है, पूरे किसान स्वावलंबी बने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।

0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।
3: तपाईं अहिले सुनिरहनु भएको छ FM अध्यात्म ज्योति